तुमरे गत मैं तो तुम्हें नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरख। गुरु नानक लंग त्याय फिरंगत गुरते अमरदास, रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबैनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिठ सबद हो जाए तेग बहादुर सिमर कर नौन दे आवे ताए सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी पंजा प्यारिया चौं सब जादिया चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई दे के अंडट कीता तिन्हां गुरमुख प्यारिया सच्चियारिया दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब। बोलो जी वाहिगुरु।

लाल जियो। आवण जान सबाई राम, हर का एक अचंभो देखिया मेरे लाल जियो। जो करे सो धर्म न्याय राम, हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जियो। आवण जान सबाए राम, आवण ता जाना तिन्ह किया, जिन मेदन सरजिया। एक ना मेल सतगुर महल बुलाए, एक भरम भूले फिर दया। अंत तेरा तू है जाने, तू सब मैं रहया समाए। सच कहे नानक सुनो संतो,

अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमुख नहीं तुझ गायो। जहाँ जाना सो थान विसारियो, एक निमुख नहीं मन लायो। पुत्र कलतर गृह देख समगरी, ऐसे ही मैं और जायो। जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो।

कर अनुग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग। मेरे मान को स्थान मीत साजन सखा बंधप अंतर जामी जान रहाओ। संसार सागर जिन्हें उपायो शरण प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधे जम कंकर किश ना कही। मोख मुकत द्वार जाके संतर दा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा रखनहार। दुख दर्द कलेश बनसै जिस बसै मन माहे मृत नर के स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे। रिद सिद नव नित जाके अमृता प्रवाह आदि अंत मध्य पूर्ण ऊचे गम अगाह। सिद्ध साधक देव मोन जान वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार। अनक पराष्ट मटैखन मैं हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान। बल बुद्ध सुध प्राण सरबस संतना की रास बिसर नाहे निमख मनते नानक की अरदास। मारू महला पंजवां शस्त्र तीखण काट डारे हो मरना की नो रोस काजो आ कोले सवारे हो तिल ना दीनो दोष। मन मेरे राम रव नित नीत दयाल देव कृपाल गोबिंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगा बैस्यो श्रम न रहो शरीर महासागर ने व्याप खिने उतरियो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत बिष्टा मूत्र खोद तेल तेल मानना मने विपरीत। ऊच नीच विकार सुकृत संलग्न सब सुख शत्र मित्र शत्र ना कशु जान सर्ब जी समत। कर प्रकाश प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चलेओ सर्वथान समान जहा सा किस तहा लाग्यो तिल न शंका मान। सुभाए अपाए जो निकट आवे सीतता का जाए आप पर का कश ना जाने सदा सहज सुभाए।

फिर ना गिनी थी वना भोगना मन मध्य हर रस संत संगत में लीवना बिन तागे बिन सूई आने मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस मैं राते तिस बौड़ना कबहूं औखी वना मिल्यो ते सर्ब निधाना प्रभु कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना मारू महला पंजवा कर अठवा अंजलिया एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

लिए, जो सूरा तिस ही हुए मरना, जो भागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मै दुरमत जाड़िए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूर्ण सुखदाते, तू दे ता नाम संभालिए। मारू महला पंजवां, बिरख हेठ सब जनते कठे, एक तते एक बोलन मिठे, अस्ति उदोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहानियां। पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजक पाए सृजनहारे, लेखा मंगे बाणियां। संग ना कोई पहिया बेबा, माल जो बन तन छोड़ मंजे सा, करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कहानियां। कोस कोस लेंदा वस्तु पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लभ पया खाते अंदर, अगली गल ना जानियां। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे, जिन कीता से न जाने अंधा, तां दुख सहे प्राणियां। खालक थावा पुला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा, सदक सबूरी संतन मिलियो, वत्ते अपन पाणियां। मौड़ा खेल करे सब आपे, एक कड्डे एक लहर वे आपे, ज्यो न चाहे त्यों त्यों नचन, सिर सिर कृत विहानियां। मेहर करे ता खसम ते आई, संता संगत नरक ना पाई, अमृत नाम दान नानक, गुण गीता नित वखाणियां। मारू सोले महला पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, साचा सच सोई अवर ना कोई, जिन सिरजी तिन ही फुन गोई।

जाल जम जो ना साकै साचे सिउ लिवलाइए। आपे पुरख आपे ही नारी, आपे पासा आपे सारी, आपे पेड़ बांधी जाग खिले, आपे कीमत पाई है। आपे पवर फूल फल तरवर, आपे जल तल सागर सरवर, आपे माश काश करनी कर, तेरा रूप न लखना जाई है।

आपे तनाख आपे सरबाण आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा कहता भक्ता सुनता सोई आपे बणत बनाई है। पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी तर

0: कृपा फरमाइए। आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी आपे वेबाण निरंकारी निरभव ताड़ी लाई
1: खानी बाणी तुजस मानी जो दिस सब आवन जानी से साह सच्चे व्यापारी से शाह सच्चे व्यापारी सतगुर बूझ बुझाई है शब्द बुझाए सतगुर पूरा सर्ब कला साचे पर पूरा अफरयो बेपरवाह सदा तू ना तिस तिल ना तमाई है काल बिकाल भय देवाने शब्द सहज रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मान पाई है आप निरालम गुर गम ज्ञाना जो दिस तुझ माह समाना नानक नीच भिख्या दर जाच मैं दीजा नाम वडाई है मारू महला पहला आपे धरती तौल आकाशम आपे साचे गुण प्रगासम जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई हे जिस करना सो कर कर वेख कोई न मेट सच लिख आपे करे कराए आपे आपे दे वडियाई हे पंच चोर चंचल चित चल पार कर जो हा पा कर नहीं पल काया नगर टह टह ढेरी बिन शब्द पत जाई हे गुरते बूझे त्रिभवन सूजा मनसा मार मन सो लूजा जो तुद सेवा से तुद ही जे निरभ बाल सखाई हे आपे सुरग मश पयाला आपे जोत सरूपी बाला जटा बिकट बेकराल स्वरूपी रूप न रेख्या काई हे भेद कते भी भेद न जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता सगले सहलो पाए समाए अलख न लख न जाई हे कर कर था कि मीत कनेरे कोई न काट अवगुण मेरे सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिल पो जाई हे पूले चूके मार्ग पावह आप बुलाहे तुह समझ हवा बिन नाव मैं अवर न दिस नावों गत मित पाई हे गंगा जमुना केल केदारा कंसी कांति पुरी द्वारा गंगा सागर बेनी संगम अड़सठ अंक समाई हे आपे से साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहा अदली प्रभ आपे परम भेद पौ जाई हे आपे काजी आपे मुल्ला आपे पुल न कबहू फुल्ला आपे मेहर दया पात दाता ना किस्से को बैराई हे जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब स दाता तिल ना तमाई पारपुर तार रहा ने केवल गुपत प्रगट सब ठाई हे क्या सालाही अगमे पारा साचा सृजन हार मुरारा जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिल मेलाई हे ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा उबे सेवे अलाखे अपारा होर केती दर दिस बिल लांदी मैं गणत न आवै काई हे साची कीरत साची बाणी होर न दिस बेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावां मैं तर होर न काई हे जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई हे मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कर वर सहज न जाना शोहर बिन पिर नींद न पाई हे ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਜਲਾ ਪੜਕਾਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਆ, ਸਾਚੇ ਹੱਥ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੇ, ਤਤਕਰ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਖੜਗਲ ਮਨ ਸੋਲੂਜ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਤਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਆਪਾਰਾ, ਜੋਤ ਦਾਤ ਜੇਤੀ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਠਾਈ ਹੈ। ਤੁਝੇ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਕਿਆ ਡਰਨਾ, ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਖ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰੋਂ ਜਾਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਬੈਸ ਰਹੇ ਭਉ ਖਾਇਆ, ਧਾਵਤ ਰੱਖ ਠਾਕਰ ਹਾਇਆ, ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰਸੋ ਭਾਰ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ, ਸਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੇ ਅਮਰਾਪੁਰ, ਸੋ ਸੱਚ ਮਿਲਾ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਧੰਦ ਲਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਉਪਰ ਅਵਰਨ ਦੀਸ, ਸਾਚੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਥੈ ਦੁਖ ਗੋਏ ਲੜਾ ਦਿਨ ਚਾਰੇ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰੇ, ਬਾਜੀ ਖੇਲ ਗਏ ਬਾਜੀਗਾਰ, ਜਿਉ ਨਿਸ ਸੁਪਨਾ ਪਖਲਾਈ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਉ ਤਖਤ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਰਭਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵਲਾਈ, ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੂਰਈ, ਤ੍ਰਿਭਾਵਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ।

महला पहला। गौ ब्राह्मण को करलावे गौ बर्तन न जाए, धोती टिका तै जप माले तान मलेशा खाई, अंतर पूजा पढ़े कते बाद सज्जन तुरका पाई।

जाने कन्नो सुनी होंगे मित्रा गल चंगी नहीं है। लोग बोलियां मारन लग पे, ये गुरु के खालसे का ना कि आप कलंकत नहीं कर रहे कि गुरु का खालसा कभी शेर भी झल्ला च लुकते होंगे, समा आने ते बार आ जाते हाँ थोड़ा समा पा के कित लुकना भी पै जाए, तो जदों लोग बोलियां मार देने हुण गुरु प्यारे वो कहिंदे आ ना जिहड़ी बोली है ये बड़ा कुछ कर जाती है, लकड़ी नू फाना ते मर्द नू ताना ये दोवें कहिंदे चीर के रख देंदे आ, हुण इहनां नू ताना वज्जा है दोवां जोधियां नू, हुण आपस विच ये दोवें जाणे झल चों निकल के बाहर ते आपस विच दोवें कुछ गल्लां बातां करदे ने वी सिंगा एक दूजे नू कह रहा कोई मर्द आला काम थोड़ी है, कोई दुखी तिकी सानू एवें वंगारे भी ये सिंह नहीं ये भेखी हो सकते आ, ये गल जिहड़ी सी इहनां दे हिरदे नू चीर के लग जाती है ते दोवें भरा फिर की सलाह करदे आ सुणो।

पहला पूरब प्रीत पिरान लाए मोटों ठाकुर महानो माथे उबे जमारसी नानक मिलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारी उन बिच नवनिध नाम एक आपे भरम फुलाई अनतन फल काम एक नी गुरमुख बूझे आहर आत्म राम एक नी सुन के मने आहर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजया गाया हर गुण नाम सलोक महला पहला पोलम तन पै मन वस एक पद रहीड़ अत ढापन दुख घणो तीने थाप परीड महला पहला।

हर कृपा धार पी आया फिर काल न व्यापै श्लोक महला तीजा। लोक अवगुणा की बन्ना गंठड़ी गुणा बेहाज कोई गुण का गाख नानका बिरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाई न जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुकम मनी है सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी।

जिस मिले सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव उदर नानक जन तेरा। दखणी महला पंजवा अंग है डुड़ांग त्रण छायांगा पुन जल हूं पाहि जिन्ना भाग मथा हड़े है तेन उस ताद उपनाहे। महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुर आपने बैठा झाक दरूद। महला पंजवा नानक पुसरिया पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया।

संतोर मस्तक लेखम तन जन्म सवार आया पुणा जिन गुर अखी देखम डकने महला पंजवा सो निवाहो गड जो चला उना थिया इंकार कूड़ावी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब सुमानी जोत जो जल कटाओ चंद्रमा प्रगटती आया पो नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुहावे नाम चाओ आठ पहर गुण गाओ नानक दरगे मनिये मिली ने था वह था पौड़ी बाहर भीख न पाई एम प्रभ यंत्र जमी एक हर जियो बाहर जी सब फिर निकामी मानो रत्ता कोठा बस्यो नित गर्भ फिराही फिर गुमा

चलो जिस कर्म लिखा दा निःचल मस्तक लेख लिखिया सो टल ना टला दा निःचल संगत साध जन बचन निःचल गुर सादा जिन को पूर्व लिखिया तिन सदा सदा यरादा। श्लोक डखण माला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराय के निखे तारे दौड़ो पी तार नानक पिर सुरते आ मोहला पंजवा जिथे कोई कथन ना हो सुन दो मां प्री मुंह जलाओ तथ नानक प्री वसंदो हरे ओ थी ओस मोहला पंजवा।

भुख तिक तिस न बे आपी जम नहीं आवे नीर पौड़ी। कीमत कहना जाइए सच साओ डो लै सिद साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदन तो लै भन्नण घड़न समर्थ उपत सब परले करण कारण समर्थ है घट घट सब बोला हरिजिक संभा।

बूढ़े भाई बने वसे क्यों पाई है जो लो मनो ना तज है बिकार। जेह घर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा रंग।

दास अंजन देस बैंकोई टुक चाहनु माहि विडान ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन प्रवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतर्गत हर पिटिया अब मेरा मन कतहु न जाय रे दंसद जाको फुरी तब का उसे क्या काज तेरे काने की गत क्या कहूँ मैं बोलते ही बड़ लाज राम जे पाया राम।

अम्बरीक कौ दियो अबे पद राज भभीखण अद किंकरो नौ निध ठाकर दई सो दमै ध्रुव अटल अजहो न टरियो भगत हे तू मारियो हर नाकश नरसिंह रूप होए दे तरियो नामा कहे भगत बस केसव अजू बलके द्वार करो मारू कबीर जियो दीन विसार्यो रे दीवाने दीन विसार्यो रे पेट भरियो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म हारियो रोहाओ साध संगत कबू नहीं किन्नी रचियो धंधे झूठ सुआन सुकर वायस जिवै भटकत चाले ओ

परदेस से दाए फिर कर नहीं आवे मरिया हावे दामन चमक डराए सेज अकेली खरी दहली मरण पे आदुक माए बिन हर बिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे।

राम राखो कीती हर गुण हेती जागत चोर न लागे जम मग न जावहु ना तुख पावहु जम का डर भौ भागा रस राव सस दीपक गुरमत द्वारे मन साचा मुख त्यावे नानक मूर्खा जो न चितै केव दूजे सुख पावे तीजा पहरे तीजा पहर पे।

मिटो कमाई हम पातर गुर नाव बिख पव जल तरिया राम गुर देवा हो शब्द सुपाई मैं मूड़ निस्तरिया राम हम मूड़ मुगद किच मित नहीं पाई तू गम वड जानिया तू आप दयाल दया करमी लह हम निर्गुणी निमाणिया अनेक जन्म पाप कर परमे

तिनका था उठेहु गवाया। कीर्तन प्राण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हार भगत लही।

अगम अगुचर नाम न जाई हर लख्या गुर पूरा मिले लखावियै रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावियै रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावियै रे हर हर नाम अमोलक हर वार हर हर हर हर नाम अमोलक हर पह हर देव ता नाम त्यावियै रे जिसनु नाम देहे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छडावियै रे हर नाम अराधे से धन धन कहिया

जन जानता ए दूर करो। आपन गौरे जन नानक को हर दयाल हो, स्वामी हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रिया रंग देखा जपती नाम ने धानी राव। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसर त्या बिसरी त्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुख दायक, दर्शन दे मन लपटानी। देख दमुद्र रहन उपजेव, नानक प्रिया प्रीतम बानी। केदारा महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद

ओंकार सतगुर प्रसाद मिल मेरे प्रीतम प्यारे आ रहाओ पूर रहया सर्वत्र मैं सो पुरख वेदांता विधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख विधाता घट घट अंतर नदर निहालिया जो चर सरणी आवै सर्व सुख पावै तिल नहीं भन्नै कालिया हर गुण निद गाए सह सुपाए प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरण आई तू पूर्ण पुरख विधाता

0: काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एकै जानी फूटी आखै कछु न सूझै बूढ़ मुए बिन पानी चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिष्टा के मुंदे दरगह दरगंध ही के बेडे रहाओ राम ना जपो
1: राम ना जपो कौमन परम पूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर ए तन राखो रहे अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे क्या को करे प्राणी जां तिस भावे सतगुर भेटे एको नाम प्राणी बलुआ के हे ग्रह बलुआ के करू मैं वास्ते फुलवत एह कयाने कह कबीर जे राम ना चेत्यो बूढ़े बहुत सियाने टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान भाऊ भगत सिंह काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभिमान कन कामनी महासुंदरी पेक पेक सच मान राव लालच झूठ बकर महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बा अंक की बार ए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछु ले जाए रहा देहरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माई मरहट लग सब लोग कुटंब मिल हंस अकेला जाए वह सुत वह बैत वह पुर पट नू बोर न देके आए कहत कबीर राम की ना सिमरो जन्म अकारथ जाए राग किदारा बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट करम कुल संजोगत है हर भगत हिरदे नाही चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल समान रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बाल्मीकै देख किस जात ते कह पदे अमर्यो राम भगत बसेख रहाओ स्वान सतर अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोभ बपरा क्या सहारे तीन लोक प्रवेश अजामल पिंगला लोभ तो कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास राग पैरों महला पहला घर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अयुनी सैभ हंगुर प्रसाद तुझते बार कछु ना होए तू कर कर देखे जाने सोए क्या कहिए कैश कही ना जाए जो इश कहे सो सब तेरी जाए राव जो किछ करना सो तेरे पास किसे आगे कीचे अरदास आखन सुनना तेरी बाणी तू आपे जाने सर्ब विडाणी करे कराए जाने आप नानक देखे ताप उथाप एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग भैरों महला पहला घर दूजा गुर के शब्द तरे मुन केते इंद्रादिक ब्रह्माद तरे सानक सनंदन तपसी जन केते गुर पर साधी पार परे भौजुल बिन तरे बै भौजुल बिन शब्द क्यों तरिए नाम बिना जग रूप व्यापिया दुबदा डुब डुब मरिए राव गुर सेवा गुर अलख अपेवा त्रै पवन सोजी गुरते सेवा आपे दात करी गुरदाते पाया अलख अपेवा मन राजा मन मन ते मान्या मन सा मने समाई मन जोगी मन बिकस बियोगी मन समझै गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰ ਪੁਰ ਲੀਣਾ ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰਾ ਭੈਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨੈਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਨ ਹੀਣਾ ਜਰ ਜੀਤਿਆ ਸਿਰ ਕਾਲੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ ਕਿਉਂ ਛੋਡੇ ਜਮ ਜਾਲੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਪ ਜਨਮ ਗਯੋ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਕਬੂ ਨਾ ਛੂਟਸ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਯੋ ਰਹਾਉ ਤਨ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਮਮਤਾ ਕਠਨ ਪੀਰ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਜਪੋ ਰਸ ਰਸਨਾ ਇਨ ਵਿਦ ਤਰਨ ਨ ਤਾਰੀ ਬਹਿਲੇ ਕਰਨ ਅਕਲ ਪਈ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਬੂਝਿਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਮੁਕਹਾਰਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧ ਨਾ ਸੂਝਿਆ ਰਹੇ ਉਦਾਸ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਬੈਰਾਗੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮਹਿਰੂ ਮਹਿ ਪੈਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਕਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੈ ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਭੈ ਬੈ ਲੈ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ ਅੰਦਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਿਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਰਾਉ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ ਪਸ਼ੂ ਭੈ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਏ ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਹਨ ਕੋ ਦਰ ਕਰ ਕਬੂ ਨਾ ਜਾਨਸ ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਗਲੀ ਰਹਿਣ ਸੋਵਤ ਗਲ ਫਾਹੀ ਦਿਨਸ ਜਾਲ ਗਵਾਇਆ ਕਿਨ ਪਲ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ ਇਹ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਸ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਕਿਆ ਲੇ ਆਵਸ ਕਿਆ ਲੇ ਜਾਵਸ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਕਾਰੀ ਰਾਹੁ ਊਂਦੋ ਕਵਲ ਮਨ ਮੁਖ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀ ਮਨ ਅੰਧੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਕਾਲ ਬਕਾਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਗਲ ਫੰਦਾ ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤਰ ਫੁਨ ਅੰਧਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਧ ਲਉ ਧੰਦ ਕਮਾਈ ਖੋਇਓ ਮੂਲ ਲਾਭ ਕੈ ਭਾਵਸ ਦੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਪਤੀਣੇ ਪੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਸਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਸ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਆਪ ਮਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੋ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਚ ਵੇਸੋ ਸਾਚ ਰਤੇ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇਵਾ ਮਿਥਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਪਾਈ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲ ਲਾਹਾ ਪਾਵਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਈ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਰਦਾਰਥ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਏ ਰਾਉ ਭਰਮ ਭੇਦ ਬਹੁ ਕਬੂ ਨਾ ਛੂਟਸ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ ਡੂਬ ਮੂਹੇ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵਸ ਭਰਮ ਨਾ ਮਿਟਸ ਗਵਾਰਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਅੰਦਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਆ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਆ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਗਨ ਮੋਹ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁਖ ਸਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਗ ਜਨਮਾ ਬਿਨ ਖਾਵੇ ਬਿਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨੇ ਫਲ ਮਰ ਭਰਮਣਾ ਰਹਾਓ पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म ते काल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज परे डंड कमलंड सिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भरमण करे राम नाम बिन शांत न आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकत तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भेग भया जेते जी जंत जल थल मैयल जतर कतर तू सर्ब जिया गुरप्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरों ला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ न करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चले बहुत विकारा रहाओ चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बोबिद पांडे कड़े कुमारा पंच तत् मिल देई का अकारा घट वद को करे बिचारा कहत नानक ए जियो करम बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई पैरों मैं लाती जा जोगी गिरही पंडित भेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहा सोए जागत रहे नमूसे को राहो सो जागे जे सतगुर मिले पांच दूत ओ वसगत करे सो जागे सो तत् बचारे आम मरे अवरा न मारे सो जागे जो एको जाने पर किरत छोड़े तत् पछाने चौवर ना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन ताकी नेत्री होए पैरों महला तीजा जाको राखे अपनी सरनाई साचे लागे साचा फल पाई रे जन कैस्यो करो पुकारा होमे हुआ हुक्मे वरतारा रहाओ ए अकार तेरा है तारा खिन में बिन से करत न लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक मार ज्वाले सोए ऐसा बुझे भरम ना भूलो कोए पैरों महला तीजा मैं कामरे मेरा कंत करतार जिहा कराए तिहा करी शंगार जात इस भावे ता करे भोग मन तन मन साचे साहेब जोग राओ ओस्तत निंदा करे क्या कोई जा आपे वरते एको सोई गुर प्रसादी परम कसाई मिलोगी दयाल पांच शब्द वजाई भणत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मलावे सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे इस मन को कोई खोजो पाई मन खोजत नाम स्यो निद पाई राओ मूल मोह कर करते जगत उपाया ममता लाए परम पुलाया इस मन ते सब पिंड पराना मन के विचार हुकम बुझ समाना कर्म होवे गुर कृपा करे ए मन जागे इस मन की दुबिधा मरे मन का स्वभाव सदा बैरागी सब मैं वसे अतीत अनरागी कहत नानक जो जाने पियो आद पुरख निरंजन देओ पैरों महला तीजा राम राम जगत निस्तारा भाव जल पार उतारण हारा गुर प्रसादी हर नाम संभाल सद ही निभै तेरे नाल राओ नाम न चेते मन मुख गवारा बिन नावे कैसे पावे पारा आपे दात करे दातार देवन हारे को जयकार नदर करे सतगुरु मिलाए नानक हिरदे नाम वसाए पैरों महला तीजा नामे उदरे सब जितने लोग गुरमुख जिना प्राप्त होए हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वडियाई दे रहा हो राम नाम जन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावे मनमुख जम पुर जाए, औखे होवे चोटा खाए, आपे करता दे वै सोए, नानक नाम प्रावत होए भैरो महला तीजा। गोविंद प्रीत सनकादक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपने

दुर्लभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई राव। राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का भाणा मने से जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान। सो सेवे जो कल धरिया तार, सो सेवे जो कल रया तार। नानक गुरमुख नाम प्यार, भैरो महला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाए, ना रुत ना कर्म थाए पाए। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार राव। तन मन खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तै लोए। कल युग में हर जियो एक, होर रुत न काई। नानक गुरमुख हिरदे राम नाम ले जमाई। भैरो महला तीजा, घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापै, तृष्णा जले अधिकाई। मर मर जमे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा, दे बुझाई। होमे रोग जगत उपाया, बिन शब्दे रोग न जाई राव। सिमरत शास्त्र पढ़े बोमन केते, बिन शब्दे सुरत न पाई। त्रै गुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई। एक आपे काढ़ लै प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए। हर का नाम निधानो पाया, सुख वस्या मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वरते, निज कर वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी, विच्चों आप गवाया। एक सकी सरकार एक, जिन ब्रह्मा बिसन रुद्र उपाया। नानक नहचल साचा एको, ना हो मरे न जाया। भैरो महला तीजा, मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे रोग गवावे, गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए, नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाई रहाओ, ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सरकारा, गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे। जिन हर रखिया उर धारा, जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता। से जग में काहे आया, गुर की सेवा कदे न नीकी। बिरथा जन्म गवाया, नानक से पूरे वडभागी। सतगुर सेवा लाए, जो इच्छे सोई फल पावे। गुरबाणी सुख पाए, भैरो महला तीजा। दुख विच जम्मे दुख मरे, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले, बिष्टा माए समाए। त्रैग त्रैग मनमुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया राव, गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए, सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुखसार, से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे धरे प्यार, तिनकी रेण मिले तां मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा ध्याया, नानक तिन की रेण पूरे भाग पाई है। जिनी राम नाम चित लाया, भैरो महला तीजा। शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हिरदे साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, ता मन दुख ना होई। भगत भगत कहे सब कोई, बिन सतगुरु सेवे भगत ना पाई है। पूरे भाग मिले प्राप्त होई रहा। मनमुख मूल गवावे, लाभ मांगे। लाहा लाभ किदू होई, जमकाल सदा है सिर ऊपर। दूजे पाए पत कोई, बहले भेक पवे दिन राती। होमे रोग न जाई, पड़ पड़ लूजे बाद वखाने। मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गत पावे। नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिना मन वस्या। तर साचे पत पाई, भैरो महला तीजा। मनमुख आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खोआए।

0: हमारे गुर की सेव, गुर पूरे दड़ियो हर नाम, सब ते उत्तम हर हर काम राओ, नाम हमारे मजन इसनान।
1: नाम जपत

पंजवा निरतन कहो तुम देवो तना आनिक पाप जाहि निर्मल मना सगल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने को देवो नाम सफल सेवा गोपाल राई कवन करावन हार स्वामी ताते बिरता कोई न जाय रहाउ रोगी का प्रभु खंडो रोग दुखिए का मिटाबू प्रभु सोग नतावे को तुम थान बैठाबू दास अपने को भक्ति लाभो निमाने को प्रभु देतो मान मूण मुग्ध होय चतुर सुग्यान सगल भयान का पौ नसै जन अपने कै हर मन बसै पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाई नानक साधु संग समाए भैरो मोहला पंजवा संत मंडल मैं हर मन बसै संत मंडल मैं दुर्त सब नसै संत मंडल मैं निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल मैं जन्म मरण मराए संत मंडल मैं जम किच्छु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल मैं नाम बखाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल मैं पाप विनाशन संत मंडल मैं निर्मल कथा संत संग हों में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल मैं हार गुणतास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक उत्पूत भगवान भैरो मोहला पंजवा रोग कवन जा राख आप तिस जन हुए ना दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे तिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सिखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे निकट ना आवे ता कै जा मराउ जावे ना सो तब किने अपाया कवन मूलते क्या प्रगटाया आपे मार आप जवाले अपने भगत को सदा प्रत पाले सब कुछ जानो तिसके हाथ प्रभ मेरु अनाथ को नाथ दुख भंजन ता कह नाऊ सुख पावे तिसकी गुण गाऊ सुन स्वामी संत ने अरदास जियो प्राण तन तुमरे पास एहो जग तेरा सब तुझे तिहाई कर कृपा नानक सुख पाई भैरो मोहला पंजवा तेरी टेक रहा काल माही तेरी टेक तेरी गुण गाही

पूर्ण समर्थ प्राव की ओट कहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख आराधो दोष मना दुख न आवे नेरे राहो आपे बन तिर तिर पवन सारी जाके सूत परोया संसारी आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी।

ऐसे संत भेटे बड़ भागी, नानक तिन कै सद कुरबान। पैरो महला पंजवा। पंच मजमी जो पंचन राखे, मिथ्या रसना नित उठ भाखे। चक्र बनाए करे पखंडी, चोर चोर पचे जैसे त्रिरंड। हर के नाम बिना सब झूठ, बिनगर पूरे मुक्त न पाइये। साची दरगह साख दमूठ, राव सोई कचेर

सकल मनोरथ पूर्ण हार, जिया प्राण भगतन आधारी, काट काट अंतर सगल प्रगास, सग जाप जाप जीव भगत गुण तास, जा की सेवना बेथी जाए, मन तन अंतर एक त्याई, गौरव देश दया संतोक, नाम निधान निर्मल इथोक, कर कृपा लीजे लड़लाई, चरण कमल नानक नित त्याई, पैरों महला पंजवा, साधक वरिया।

जन्म व्यर्था जाई, जस सलाही जस हर तन रस, सोवड़ भागी जस गुरमस्तक हाथ राउ, जिस नाम हृदय तिस कोट कई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना तिरग जीवन मुआ, जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय तिनको निध पाई, नाम बिना परम आवे जाई, जिस नाम हृदय सो बेप्रवाह, जिस नाम हृदय तिस सदी लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड पर पारा परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा, जिस नाम हृदय तिस निश्चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नामहीन नाही पत भी साहो, जिस नाम हृदय सो सब मैं जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना परम जो नीम ऊंचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा,

अचिंत हमारे बिनसे बैर, चिंत हमारे मिटे अंधेर, चिंतो ही मन कीर्तन मीठा, चिंतो ही प्रभ काट घट डीठा, अचिंत मिट्यो है सगलो भरम, चिंत बसियो मन सूख बिसरम, चिंत हमारे अनद वाजै, चिंत हमारे गोविंद गाजै, अचिंत हमारे मन पति आना, चिंत धनी आ चिंत पछताना, चिंतो उपजो सगल विवेका, चिंत चरी हथ हर हर टेका, अचिंत प्रभु।

हमरा झगड़ा रह न को पंडित मुल्ला छाटे दो रहाओ मन मन आप पहराओ जय नहीं आप तहां हुए गावो पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया हृदय इखलास निरकल मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओ चेतना तरे रहाओ जो निरतन सरतन के जाई आगे बैठा पीठ पराई जो

प्रभु की कला न मिटी जाई। कह कबीर नितन है सोई, चा कह हृदय नाम न होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, तवे मानस दे पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही पजर की सेवा। अजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन का ही लाओ रहाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल गरसी नहीं काया। जब लग विकल भाई नहीं बाने, बज लै रे मन सारंग बाने। अब ना भजस भजिस कब भाई, आवै अंत न भजिया जाई। जो कुछ करै सो

दूर बताओ, दूंदर बांधो सुंदर पाओ रहाओ, काजी सो जो काया बेचारी, काया की अगन ब्रह्म पर जा रहे, स्वप्न बंदना दे झरना, तिस काजी को जरन मरना, सो सुरतान जो दोए सरतान, बाहर जाता पीतरिया ने गगन मंडल में लश्कर करै, सो सुरतान सदर सिरतर है, जोगी गोरख गोरख करै, हिंदू राम नाम उच्चरै, मुसलमान का एक कदाई, कबीर का स्वामी रहा समाई, मोहल्ला बंजवा जो पाथर को कह दे देव, ताकि बिरता होवे सेव, जो पाथर की पाई पाई, तिसकी काल अजाई जाई, ठाकर हमरा सद बोलनता, सर्व जिया को प्रवदान देता रहाओ, अंतर दियो न जाने पंद, परम का मोया पाव है पंद, ना पाथर बोले ना कुछ दे, फोकट कर्म निपल है सेव, जे मृत को चंदन चढ़ावे, उसते कवन उसते कहो कवन फल पावे, जे मृत को बिस्ता में रुलाई, ता मृत का क्या कट जाई, कहत कबीर हो कहो पुकार, समझ देख साकत गवारी, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के भेदे, दीपक पतंग माया के छेदे, काम माया कुंचर को व्याप,

पंच दूता स्वान से आल माया में रहता मंत्र चीते और सिंगाता बांजार गाडर और लूतरा बिरख मूल माया में परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा हर तर देव कह कबीर जसोधन दस माया ताब छुट्टे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी कराए तब लग काज एक नहीं सराय।

जावलाग सेंग रहे बन माहे, तावलाग बन फुले ही नाहे। जब ही म्यार सिंह को काए, पूर रही सगली बन राए। जितो बुढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे। दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए। सत्तर साए सलार है जाके, सवा लाख पे कंबर जाता के। सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जा कह खेल बकासी। मोह गरीब की जो गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे रहाऊ। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिरे दीवाना। बाबा आदम को कछ नजर दिखाई, ओन पी पिस्त कनेरी पाई। दिल खल हल जा कै जर्द सोबानी, छोड़ कतेब करे करे सैतानी। दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई। तुम दाते हम

कह कबीर को संग न साथ, जल तर राखन है रघुनाथ। पैरों कबीर जियो अष्टपदी कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

समाई। मन मदे जाने के को जाने के जाने जे कोई, जो बोले सो अपे होए, जोत मंत्र मन अस्तर कराए, कह कबीर सो प्राणी तरह।

कोटक पाप पुन अवह हरै किन्दर कोट जाके सेवा करै छप्पन कोट जाके पतहार नगरी नगरी खियत अपारी लाट छुट्टी वरते बिगराली कोट कला खिले गोपाली कोट जग जाके दरबारी गर्बन कोई करे जेकर विद्या कोट सब गुण कहे तो पार ब्रह्म का अंत न लहे बावन कोट जाके रुमावली रावण सेना जय तेली सहस कोट बोकत गुम कहत पुराण दुर्योधन का मिथ्या मान

कामना उच्चरस श्री गोविंद रंगीला जी बार के नाये सुरंग रंगीले हर हर ध्याय राव मिथ्या जेबा अवरे काम निर्वाण पद एक हर को नाम संख कोट अन पूजा करी एक ना पूज स नामे हरी पन्नवे नाम देव एक करना अनंत रूप तेरे नारायण पर तन पर दारा पर हरी ताक निकट बसे नर हरी जो ना भजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शन रहाओ जन का पितर है अंतरा जैसे पशु तैसे हो नरा बनमत नाम दियो ना कह बना ना सोहे बतीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाये ना में दयानी दूध पियो गोविंद राय दूध पियो मेरे मन पते आए ना ही ता कर को बाबरसाए रहाओ सोन कटोरी अमृत भरी ले नामे हर आगे करी एक भगत मेरे हृदय बसै नामे देख नारायण हसै दूध पियाई भगत कर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पधार।

काबू त्वरित रंग न चावे, काबू पाए पनहिउ न पावे, काबू खाट सफेदी सुहावे, काबू भूम बया न पावे। मन्नत नाम दियो एक नाम निस्तारे, जे गुर मिलै ते पार उतारे। हास्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत कर नामा पकड़ उठाया। हिंदड़े जात मेरी जात मराया, चीपे के जन्म काहे क्यों आया राय।

0: Re.
1: जैसी भूखे प्रीता नाज त्रिखावन जैसे ती काज जैसी मूड कटंब पुराण जैसी नामे प्रीत नारायण नामे प्रीत नारायण लागी सहस भाए प्यो बैरागी रहाओ जैसी पर पुरखारत नारी लोभी नर्तन काहितकारी कामी पुर कामणी प्यारी ऐसे नामे प्रीत मरारी रहा सच साई प्रीत से लाए अपे लाए ऐसी नामे प्रीत मरारी साई प्रीज आपे लाए गुर प्रसादी दुबदा जाए कवन तूठ रिया समाए नामे चित लाया सच नाए जैसी प्रीत बार के अर माता ऐसी हर से ती मन राता प्रण वह नाम दे लागी प्रीत गोविंद बसे हमारे चीत कर की नार त्यागे अंदा पर नारी स्यों काले तंदा जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना अंत की बार मुआ लपटाना पापी का गर्ग ने माए जलत रहे मिटवे कब नाहे राहो हर की पवन देखे जाए मार्ग छोड़ा मार्ग पाए भूलो भूला आवे जाए अमर डालाद बेखाए जो बैसवा कैक परे अखारा कापर पैरे करे शंघारा पूरे ताल निहाले सास वाके करे जम का है फास जाके मस्तक लिखे हो कर्मा सो पज परे है गुर की सरना कायद नाम दो विचार इन बैंद संतो त्रो पार संडा मरका जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पच हारे राम कहे कर ताल बजावे चटिया सब बिगारे रामा नामा जप बहु करे हृदय हार जी को सिमन तरे राव बसुदा बस कीनी सब राज बिनती करे पटरानी पुत्र प्रहलाद के हानी मन है तिन कहो और ठानी दुष्ट सा मिले मंत्र पाया कर से औद कनेरी गेर तार जल ज्वारा पै राखे हो राजा राम माया फेरी काड खड़काल पै को प्यो मोय बतावो तो जो रखै पीत पतंबर त्रेपण तनी थाम्ब माए हर पाखै हर नाख निस जिन नके बदारे सुन किए सनाथा कैद नाम दियो हम नर हर त्याव राम अभे पद दाता सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कामा नामा सुल्तान ने बादला देखो तेरा हर बीठला रहाओ बेसमल गौ दे जवाए नात्र गर्दन मार उठाए बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया न जीवे कोए मेरा किया कछु न होए कर है राम होए है सोए बादशाह चढ़ो हंकार गजस्ती दिनों चमकार रुदन करे नामे की माए छोट राम की ना भजे खुदाए ना हूं तेरा पुंगरा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट नामा बरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरे मलिया मान बादशाह बेनती सुने नामे सार पर सोना लेहो माल लियो और दो माल लियो तो दो जग परो दीन छोड़ दुनिया को परो बाबो बेड़ी हाथो ताल नामा कावे गुण गोपाल गंगा जम जो उल्टी बै दो नामा हर करता रहे बात सात कड़ी जब बीती सुनी अजय न नायो त्रेपन तनी पाखंतर बाज बजाए ला कर चले गोबिंद आए ला अपने भगत प्रभ की प्रतपाल गढ़ चढ़े आए गोपाल कहे तदन गौडी तरे तगन गौडी तरो रहे कहे तां लेकर ऊपर तरो कहे ता तन अकॉर्डिंग करो ਕਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਗਉ ਦੇ ਜਵਾਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤੇ ਆਏ। ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਸੇਲ ਮਸੇਲ, ਗਉ ਦੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਲ, ਦੁੱਧ ਦੋ ਜਾਂ ਮਟਕੀ ਭਰੀ ਲੈ ਪਾਸ਼ਾ ਕੇ ਆਗੇ ਤਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਓ ਘੱਟ ਹੀ ਘੜ ਲਾਗੀ ਆਏ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਬੇਨਤੀ ਫਰਮਾਏ, ਬਖਸ਼ਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਏ। ਨਾਮੈ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਏ ਕਿਛ ਪਤੀਆ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਏ, ਪਤੀਆ ਕਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਜ ਸੀ ਚਾਲੋ ਸੁਲਤਾਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਰਿਆ ਸੰਭਾਏ, ਹਿੰਦ ਮਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਾਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਤੀਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਏ। ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਲੇ ਉਦਰਿਆ ਪਾਰ, ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦ ਪਿਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੈ ਨਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਪਿਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੈ ਨਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਣ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮ ਸੋ ਪਿਆਰ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸੋਧ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।